0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 6 बज्यो।

फेको का विभिन्न होम अप्लायंस को खरीद में कैशबैक तथा श्योर शॉट गिफ्ट। वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैटिक, डिशवाशर में वॉशिंग टैबलेट, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन और फ्री स्टैंडिंग ओवन में प्रेशर कुकर। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज ईएमआई मार्फत खरीद कर सकता।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 7 बज्यो।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

0: आधिकारिकता पुष्टि गरौं, अफवाह नफैलाऊ, सत्य जाँचौ, भ्रमबाट बचौ, जिम्मेवार संचार संस्कृति अपनाऊ।
1: अनुरोधक गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 8 बज्यो।

0: दमकल एम्बुलेन्स को फोन नंबर जुनसुक समय में चाहन सकता कंठ पारो वा सबले देखने ठावक
1: सार्वजनिक हित का लागि उज्यालो को अनुरोध।

0: consumer, this is me, and I work for Michelin. Worldwide franchise, India to Michigan, and I'm here to tell you what I have to offer. Light truck passenger, tires, they're awesome, super, wonderful, excellent, amazing. Number one rule, though, we're all about safety. When I go in transit, I'm safe there and safe back. Spread out the word from the roads to the racetrack. Michelin.
1: World's number one tire brand.
2: Classic Techo 16th anniversary offer. Jati ma chayo, keti ma payo. Budget ra package ra pai ke rozai ko. Abo internet TV, the Wi-Fi 6 router pani keti mai payin cha. Classic Techo kunai pani plan kharid ma harek hafta 3 jana lai 3 mahina internet bonus ra masik 1 jana lai ru 12,000 ko internet bonus. Samparka 9801004477. Classic Tech.
3: के तपाईँ ढाड, कम्मर, घुँडा, गर्दन दुख्ने समस्या, युरिक एसिड, बाथ रोग, नसा सम्बन्धी समस्या वा अन्य कुनै दीर्घ रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ?
4: यस्ता समस्याको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट सर्वसुलभ उपचारका लागि बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फतको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयलाई आजै सम्झनुहोस्।
3: हाम्रा सेवाहरू
4: ओपिडी सेवा,
3: विशेषज्ञ ओपिडी सेवा,
4: निशुल्क औषधि वितरण,
3: सशुल्क फार्मेसी सेवा,
4: फिजियोथेरापी सेवा,
3: अकुपंचर सेवा,
4: योग परामर्श सेवा,
3: क्रियाकल्प सेवा,
4: पूर्व कर्म पञ्चकर्म सेवा,
3: छार सूत्र सेवा,
4: जलौका सेवा,
3: अग्निकर्म लगायत अन्य विभिन्न सेवाहरू,
4: प्रयोगशाला सेवा बिहान 8 बजेदेखि 3 बजेसम्म।
3: विस्तृत जानकारीका लागि
4: आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय बागमती करिडोर कैरीगाउँ काठमाडौँ। फोन नम्बर 01-4110-6-96 98-514-2463।

0: हजुरहरू पनि टाटाका जेन्युइन पार्ट्सहरूको प्रयोग गरी आफ्नो गाडीको आयु बढाउनुहोस्, मर्मत खर्च घटाए आमदानी बढाउनुहोस्। थप जानकारीका लागि सिप्रदी अटो पार्ट्स प्राइभेट लिमिटेड, थापाथली, काठमाडौँ।
1: नयाँ वर्ष 2083 मा सैमसंग का ग्लोबल नंबर 1 टीवी होम अप्लायंस में 25% सम्म छूट पाउनुहोस्। रु 50,000 भन्दा माथिका अप्लायंस को खरीद में नागरिकता के आधार में 24 महीना सम्म को ईएमआई उपलब्ध छ। चुनिएका वाशिंग मशीन में 6 केजी सर्फ एक्सेलमेटिक निःशुल्क र टीवीहरूमा 12 महीना सम्म को नेट टीवी पैकेज निःशुल्क पाउनुहोस्। सैमसंग सँगै यो नयाँ वर्ष में स्मार्ट घर स्मार्ट शुरुआत, शर्तहरू लागू हुनेछन्। यो योजना सीमित अवधि का लागि चुनित मोडेल में मात्र लागू, 24 महीना को ईएमआई 7.99% ब्याज लागू हुनेछ।

0: बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों।
1: यो रेडियो दीदी बहनी को समय सूचक हो।
2: अहिले मध्याह्नको ठीक 12 बज्यो।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: निकट मा दीदी बहिनी, विकट मा दीदी बहिनी, यो रेडियो दीदी बहिनी।